चाहे हम दुश्मन का जाल बिछाए, नफरत की आग लगाए, ओ साथ जो तेरी दुआएं, हर दुश्मन को समझाए।

दुनिया भर की सैर को देखो निकला है ये कौवा, उड़ते उड़ते इस नगरी में आ पहुंचा है कौवा, बुलबुल का हर गीत चुरा कर गाता है ये कौवा, औरों की नक्काली करके जीता है ये कौवा। कौवा चला है।

दिवस, दिन, पर, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, दाम में लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: सुना आपने गीत?
1: जहाँ तुमने सुना?
0: रात को भी आप यही गीत गा रहे थे, क्यों गाया करते हैं आप इसे?
1: इसलिए कि तुम इसे पसंद करती हो।
0: नहीं, क्यों परेशान करते हैं आप मुझे?

0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे ना ना ना ना ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: सुनो सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, मगर कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, प्रेम कहानी। ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे, हाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ,

जाना के हाँ हाँ और सुनो हाँ एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी। गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका। अजब भेष था उसका। चले रात आगे। सुनो बात आगे। सुनो। हाँ।

तू अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तू, है जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: आवडलेले पुस्तक या कार्यक्रमात आपण ऐकू शकणार आहात विविध वाचकांना आवडलेल्या पुस्तकाचा परिचय. प्रसारण दर शनिवारी सकाळी 8 वाजता. तेव्हा ऐकायला विसरू नका मला आवडलेलं पुस्तक.
1: राज कपूर की नीली आंखें, देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल, संजय तार छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोज सा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकीरी जोड़ उसी से टांका, ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना.
2: कमर हेलन की आंखें पद्मनी की गाल विन्नी के, अदा आशा की शोखी साधना की बाल सिन्नी के, नूतन का कद शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सिरहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए.

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: हैं? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियो, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।